राग गौड़ी दीपकी विच ऋषभ कोमल मध्यम तीवर अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच ऋषभ सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी षड़ज संवादी पंचम अते समा रात दा पहला पैर है। इस राग विच तुम गावो मेरे निर

ओ पाई कन्हैया जिन्हों गुरु कलगी दर पातशाह ने वो बख्शिश की थी कि आ जिथे पाई कन्हैया तू पानी पिलाउना आ मलम भी फटा दे ला लिया आ सिख दा प्यार है आ सिख दी भावना है जिसनों बेगाने भी अपने लगते बस वो असल विच सिख है पर होवे कोई पाई कन्हैया।

रोंदे नूं नहीं थक सकदा। जिहड़ा गुरु दा सिख है बांह फड़ लैंदा, अपने शरीर ते भावे दुख सहना पै जावे, शरीर ते कष्ट जर सकदा, पर दुखीए दा दुख निवृत्त कर दिंदा। भाई कमलीए वर्गा राजे दा वजीर वजीर खां कोड़ी हो गया, ऐसा दुख लग गया, राजे ने भी शहर तो बाहर कढ दिता है, पर भाई कमलिया बंदगी करने वाला नाम जपण वाला सुखमनी साहब का पाठ करता जाता। वजीर खां दे कन्नां विच जदों बाणी पई तन मन ठंडा होया, आवाज मारी ओ सिखा अकीदी कलाम पढ़दा, आ बाणी सुनदिया मेरा तन मन ठंडा हो गया। ते भाई कमलिया परपकारी कोल बह के सुखमनी साहब का पाठ सुनाया, फिर इथों तक अपने मोढ़िया ते चुक के गुरु अर्जन देव पातशाह दे दरबार में लिया के दुख दूर कर दिता है। भाई कमलिए ने ऐसा परपकारी ओ कोड़ी वजीर खां वर्गे जिन्हां दा शरीर कंचन वर्गा कर दिता, फड़ लई बां दुख दूर कर दिता। पर आओ भाई सिखां दा तां प्यार ही इहो जिहा, भावना ही इहो जिही, हिरदे विच परपकार दा बीज बोया हुंदा है, इस वास्ते बां फड़ लईए। दुखियां दा दुख नहीं हो जरदे, रुड़दे जांदे दी बां फड़दे, पर मुख तो सत नाम जप के वाहिगुरू वाहिगुरू कह के फिर भी मन नीवा मत उची आओ वही सिखा दा। पर जिहड़ा सिख बन जावे भेखी सिख नहीं, विखावे वाला सिख नहीं, जिहड़ा अथिक अंदरों सिख है, जिहदे हिरदे विचों प्यार है, बस वो प्रगट ही नहीं करदा, वो तो कहिंदा ही नहीं, वो तो कहिंदा मैं अजे सिख बनिया ही नहीं, क्योंकि गुरु का मार्ग ही ऐसा है। गुरु के पाए हुए पूर्णियां ते जिहड़ा सिख चलदा है, बस वो तो मन नीवा मत उची, कि जिन्हां ते गुरु बख्शिश।

अपना आप धर्म वास्ते कुर्बान कर जाना, निशावर हो जाना, ते फिर भी हर वक्त गुरु दा धन्नवाद शुकराना करना, ए पूर्ण सिख दी निशानी, ए पूर्ण शहीद दी निशानी, ए पूर्ण सूरमे दी निशानी है। वो केड़े सूरमे? आओ इन्हां तुकां नूं पढ़ लईए, तन मन धन दा माण।

तीर्थ नावां जे तिस भावां बिन भाणे के नाय करी जेती सिरठ उपाई वेखां बिन करमां के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणक जे इक गुर की सिख सुनी गुरा इक देह बुझाई सबना जियां का इक दाता सो मैं विसर न जाई।

असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार।

असंख मूर्ख अंधकोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुती माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो कादी।

आओ। भागहोआ गुरसंत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त जूनी सह भंगुर प्रसाद जियो।

पहला। यानड़िए मानड़ा काय करे हैं, अपनड़ कर हर रंगो की ना माने हैं, सौ नेड़ तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकियां देह सलाइया नैनी, भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी, जां सौ तरे प्यारो।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जल थल महियल भरपुर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदर छावां तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावां नित तेरे।

हैं, निरुक्त स्वरूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव स्वरूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम।

करुणाकर हैं, विशंबर हैं, सर्वेश्वर हैं, जगतेश्वर हैं, ब्रह्मंडस हैं, खलखंडस हैं, परते पर हैं, करुणाकर हैं, अजपा जप हैं, अथपा थप हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अमृतामृत हैं, करुणाकृत हैं, अकृताकृत हैं, तरणीकृत हैं, अमतेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, अकृताकृत हैं, अमृतामृत हैं, अजबाकृत हैं, अमृतामृत हैं, नरनायक हैं, खलकायक हैं, विशंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्पायक हैं, पवपंजन हैं, अरगंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूर्जे नमो चंद्र चंद्रे नमो राजराजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपरमं अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तल परणामे समस्तल परणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुधर्मं विभूते सदा सचिदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग विभूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूँ ते एक रति विन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहाँ पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजित टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत कौ अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसाज सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचकन एक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे
मानवी इंद्र गजेंद्र नराध उपजौन त्रिलोक को राज करेंगे। कोटि स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंवर साज भरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सचिपत अंत पद से जम फास परेंगे। जे नर श्रीपत के परस हैं भगते नर फेर न देह तरेंगे। कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो। नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो। बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बतायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पशाह को शीश निवायो। को मृतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। कूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपई। बहुर असुर का काठ समाथा श्री असकेत जगत के नाथा। द्वितीय बान सो दो अर कर काठ दयो अस्तुज नर नाहर। पुनराशिष का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा। पोहपन ब्रिष्ट गगन ते पई सभ न्यान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे। कव्यो बाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सब तुम कावहो। आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिये। सब बैरन को आज संघरिये पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सुपम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन शत्रु हमारे मारी है। आप हाथ दय मुझे उबरिय मरण काल का त्रास निवरिय। हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो। आद अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बध कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा परजा तर तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम।

सेवा लैण कोई संगत नवी आई हुंदी है केवल बोल के चारे विशेषताइयां लंघदे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पहली विशेषताई धरती ते जिन्ने अवतार आए

सारे ग्रंथ रब दी गल करदे ने, एक गुरु ग्रंथ साहिब साध संगत जेड़ा रब नाल गल्लां कराउंदा है। एक बारी गज के आखो सतनाम, इस बाणी नूं कोई समझे ये रब नाल गल्लां ने। बाबा ईश्वर सिंह जी का वचन है, कहंदे सी कविता जड़ी ना कविता कवितावां ये चटनी है, चटनी थोड़ी जी चटनी खाओ स्वाद जरूर लगती पर कदी एदे नाल पेट नहीं भरदा, पेट रोटी नहीं भरदा, रज रोटी ना, बाणी रोटी दी तरह है जड़ी रज देंदी। रब नाल गल्लां करां, तीजी विशेषता ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी, एक ओंकार तो लेके 18, 10, 20 तक किते भी हां नूं नहीं आण दित्ता, हां नहीं आण दित्ता। ये नाल नाल चानना है कि वेख ले मेरे चो चानण आ रहा है हां नहीं, नहीं तो होवे गुरु नानक अपने नां दे नाल नानक गरीब, नानक सद, नानक विचारा, नानक नीक, नानक दास, नानक दवाना, नानक बताला, किते हां नहीं आना। थानू पता भाई गुरदास जी बाणी लिखदे सी ते छेवें पातशाह नूं वखाणी, एक दिन वार लिखी सी ते खीरली पंक्ति सी, जे गुरसांग वरतदा सिख सिदक ना हारे। नानी की जी हों सी गुरु नूं ध्यान लवे सिख डट जे, गुरु परचा पावे ध्यान लवे तो डट जे। आ कई तुहाडे चों कहिंदे कोई नहीं जी जो ने करदा चंगा, यह बड़ी वड्डी वस्ता है, इसे ते बख्शिश मंगनी। इन्नी पंक्ति सी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना हारे, कोई दसो छेवें पातशाह ने किड्डा वड्डा परचा पा, पैसे भेजे घोड़े खरीदन काबल, ठीकरियां दृष्टि बनाती, ठीकरियां बन गई, तंबू पाड़ के चले गए काशी, उथे कथा करन लग पे भाई गुरदास जी, ते छेवें पातशाह 2-4 महीने बाद सुनिया भेज दे साडा चोर आया ते मुश्कां बन के भेज दे। तन भाई गुरदास जी कहन लगे मैनू जल्दी ले जा, केवल इशारा लेना हौन वेख लो जगह। जदों आए ते गुरु साहब ने छेवें पातशाह ने रुका अगे करता रुका, ए तुसी लिखी जे गुरु सांग वरतदा सिख सिदक ना आरे, वरताया सांग भजे क्यों तंबू पड़ के आपको सतना डना सी। अजे बाबा नंद सिंह दी संगत बाबा जी का वचन जे कहंदे सतगुरु साडा इम्तिहान ना लई परचा ना पाई, इम्तिहान ते परचा ओदा लै जिन्हू कुछ पढ़ाई आंदी होवे, असी ते अगे ही फेल आ। किमां पुरश फेल का की इम्तिहान है, सतगुरु ने रुका अगे करता तुसी लिखी है जे गुरु सांग वरता सिख सिदक ना, फिर सांग वरताया पै ठीकरियां बन गई क्यों गए। संगत केवल इशारा लेना, भाई गुरदास जी ने दूजी वार उचारी जी खीरली पंक्ति सी जे गुर परमाए सांग सिख क्या करे विचारा, भी जे गुरु नूं ध्यान लवे ते सिख विचारा कुछ नहीं कर सकदा। गज गया आखो सतनाम, गुरु कवे मैं तेनों इहदे ते पाणा फेल करके खाणा ते फेल कर लू कुछ नहीं। संगत इन्ना इशारा लवे
भाई गुरदास जी भी जेड़ी बाणी उचारदे महाराज ने ओहदे च भी हां नूं जगह नहीं आणी। साडी जिंदगी च भी इह हां जगह ना लै, डर डर के पैर रखण दा मार्ग है। डर डर के डरना की है, किधरे भी किसे गुण दी माया दी धन दी सुंदरता दी पढ़ाई लिखाई दी गुण दी कुल दी राज भाग दी हां ना आ जाए। नहीं तो गुरु नानक मैं कहना सृष्टि का मालक अपने आप नूं दास कहिंदा है, गरीब कहिंदा बेचारा। ये तीजी विशेषता ही किधरे हां जगह नहीं देती। चौथी जड़ी तुसी पिछली वारी सुनी सी, ना दीपक रागे गुरु ग्रंथ साहिब विच, ना मेघ रागे। महाराज ने एक सानू चानना दिता कि बहुत ही खुशी आ जाए, भंगड़े नहीं उठे कम नहीं। मैं मेघ राग पाया ही नहीं विच, कोई भाणा वरत जे ते अत सोग नहीं, रोने कलपने नहीं, मैं दीपक राग पाया ही नहीं विच। अज पंजवी विशेषता ही महाराज जी सेवा लैण, 10 मिनट समाप्ति अपा कर देंगे, नेरा जल्दी हो जाता। उस तरह साढ़े 6 होए ने, अजे मन टिका के बैठे हो 10 मिनट जी, पढ़ो एक बारी पंक्ति जी।

रंग न लाए संता से भी रंग न लाए साकत संग विकर्म साकत संग विकर्म कमाए दुर्लभ देह कोई अज्ञानी

gasoline. काहे देवे हो ये शब्द गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने मथुरा वृंदावन जदों आप गए ते जाके वेख्या भाई किवें ये पंडित लोग राशन पाउंदे हैं कोई कृष्ण भगवान बनता है कोई ते उना दे नाल ही फिर कुकर्म करदे हैं ते हजूर ने ये शब्द उत्थे उच्चारण किया पर है कहनी प्रधान ने क्योंकि अगे करनी कीरत वाची ऐसा ना हो अगर उपदेश है आप न करे आवत जावत जन्मे मरे लोगों नु रोकता रहे भाई शराब न पिया करो ते आप पीता होवे लोगों नु कवे कुकर्म ना करया करो आप करता होवे हजूर कहते ऐसा मनुख कदे अपना जीवन सफल नहीं कर सकता अपने मनोरथ विच कदे कामयाब नहीं हो सकता उच्चारण करो तेरी वाहे वो फिर जहां सिकटारा पवे जंगीरी तो चाकर हथों मरना सुली मारिया गया सी किते अहंकार नाल फौजा लैके आ रहे है गुरु अर्जन देव पातशाह जी मारन ले गुरु नानक दे दर दे नाल शुरू तो ही क्योंकि इतने हिंदू मुसलमान किसी भी मत का जो भी आंदा है उसनू रहन लई खां मिलती है शकन लई लंगर मिलता है ते फिर सिर्फ शरीरक लंगर ही नहीं बाबे दे घर कीर्तन का भी लंगर चलता है घर कीर्तन होए उधार ते जदों कीर्तन का लंगर छक के उठता है मनुख ते फिर कड़ा प्रसाद की देख दर मिल जाती है उच्चारण करो तेरी भाई ते गुरु नानक दे दर की दिनों दिन वध्याई ये झूठी सता वाले कभी भी नहीं सह सके हम भी खां खां से जितनी भी धरती है सारे वर्ल्ड में जिथे कोई एक भी सिख बैठा है ना सात संगत उसने गुरुद्वारा पहला बनाया है अपना घर बाद में बनाया है चार करो तेरी भाई ये गुरसिखा भी ऐसे ही आए और हर गुरुद्वारे में फिर गुरु का लंगर कीर्तन से आए स्थिति नूं थां मिल गई इस दर की वडियाई नूं जहांगीर वेख नहीं सकिया ते सुली खान नूं कह दिता भाई तू कश्मीर जा रहे हैं जंग करन लई रस्ते विच गुरु नूं ही सोधदा जावे ते जदों हजूर दे पास ए सुनेहा पहुंचिया विचार होई प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीय मता दोए मानक पहुंचावो किसी ने आख्या महाराज पत्रिका लिख दई ते जे बादशाह जहांगीर नूं पत्रिका नहीं लिखनी तां दो सियाणे पुरश भेज दईए जो गुरु नानक दे दर दी वडियाई दस सकन ते जे ए वी नहीं करना तां फिर हुकम करो असीं जूझ जांदे हां तृतीय मता किश करो उपाया और शांत मूरत गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुज बाणी दे बोहित शहीदों के सिरताज दाता जी जुड़ गए अकाल पुरख वाहिगुरु के चरणों में ते आप कहते हो मैं सब किश छोर एक बार जपो ना मैं सब किश छोर प्रभ तू ही दे आया अच्छा मैं इन्हों कपटियां जाके कह भाई मैनू कुछ ना आख ये दुनियादार राजेशी मुकदम कुत्ते इन्हों जाके आखा नहीं मैं अपने परमेश्वर अगे अरदास करनी है जिन्होंने परमेश्वर का आसरा लिया है ना इतिहास में आंदा है भाई सुली खां बड़े हंकार नाल फौजा चढ़ा के आ रहा सी इसका घोड़ा ऐसा पागल होया बंदे पठे विच जा बढ़िया ते सुली समेत सुहा हो गया सुलही ते नारायण राख सुन ही का हाथ कहीं ना पहुंचे सुन ही होए हुआ ना पाक मुसलमान सर के मर जावे ना कहें ये दोजक विच गया नरका विच गया काज कुठार खसम से काटिया काज कुठार खसम से काटिया खिन में होए गया है खाक मंदा चितवत चितवत पचिया याद रखना गुरु नानक दे दर नूं गुरु नानक दे दर लई जिसने मंदा चितवे ना सात संगत वो कदे रहा नहीं है
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਖਰ ਗਿਆ। ਮੰਦਾ ਚਿਤਵਤ ਚਿਤਵਤ ਪਚਿਆ ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਬੀਨਾ ਧਾਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਧਨ ਕਛੂ ਨ ਰਹੇ ਉਸ ਸ਼ੋਧ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਸਿੱਖਦਾਰ ਹੈ ਪਵੇ ਜੰਜੀਰੀ ਤਾਂ ਜਾਕਰ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ

लाल चिल्लागे जन्म गवाया, लाल चिल्लागे जन्म गवाया, माया परम कुला।

पटलौ लपा के छड़ देता गया। मनुखता जल्दी रोई पर किसे ने दया नहीं की। पत्थर दे पुजारी सन पत्थर हो चुके सन, ते पत्थर दे अखां विच कदी आंसू नहीं आंदा सन, भावे सारा जगत का ही खून बह जाए। पुजारन करो तेरी वाले, सारी प्रकृति तां रो रही होवेगी, कुदरत रो रही होवेगी। जदों बेगुनाह नूं मारिया जा रहा सी, पर ए पत्थर पत्थर दे इंसान इन्हां दी अखां विच आंसू नहीं आए। उजारन करो तेरी वाले, एक नहीं सिमरन भजन, दया नहीं कीनी तो मुख चूटा खाएगा। आ दुनिया से राज करने वाले, जे तेरी हाथ में कलम है तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है। जे तू रहम की कलम वाहेगा तेरे पे भी वो रहम की कलम वाहेगा, ते जे तू जुलम की कलम वाहेगा तो तेरे पीछे भी कोई खड़ोता है भाई। इसलिए जहां सिकदार है पवे जंजीरी, ताकर दत्तों मरना।

अष्टपदी। जय मात पिता सुतमीत न पाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दले, तै केवल नाम संग तेरे चले। जय मुश्किल हो वै अत पारी, हर को नाम खिन माए उतारी। अनक पुने चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख घनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक माया रंग तिख न बुझावे, हर का नाम जपत आकावे। जय मार्ग इहो जात अकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा ते आये, नानक गुरुमुख परमगत पाईए। छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपत तै पार पराही। अनक बिघन जे आए संकार, हर का नाम तत्काल उतारे। अनक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हो मैला मल कबो न तोवे, हर का नाम कोट पाप खोवे। ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाईए साध के संग। जय मार्ग के गने जाहे न कोसा, हर का नाम उहा संग तोसा। जय पैड़े महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा। जहां पंथ तेरा को न सियानू, हर का नाम तै नाल पछानू। जय महाप्यान तपत बो काम, तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम। जहां तिरखा मन तुझे आकर्ष है, तै नानक हर हर अमृत बरख है। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन विश्राम। हर का नाम दास की ओट, हर के नाम उदरे जनकोट। हर जस करत संत दिन रात, हर हर औगत साध कमात। हर जन के हर नाम नितान, पार ब्रह्म जन की नो दान। मन तन रंग रते रंग एक है, नानक जन के बिरत विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर के नाम जन को तृप्त भुगत। हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत कब परे न पंग। हर का नाम जन की वड़ियाई, हर के नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे वियोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजय हर हर देवा। हर हर जन कै माल खजीना, हर तन जन को आप प्रभु दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रगट नहीं छपे। हर की भगत मुक्त बो करे, नानक जन संग केते तरे। पार जाते हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत रित वसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग विड़ पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारियां श्लोकां विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होंदा, मेरा काम इन्ना है। ओ भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तैनूं गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार वध गया, दात प्यारी विसरिया दतारा, देण वाला भुल गया, हुण तेरे कोल गुरु लई टाइम ही नहीं हुंदा। सतगुरु बाणी विच समझांदे ने, माया कारण तावी मूर्ख लोग अजान, ये मूर्खां दा काम है। सुख आंदियां भी देर नहीं लगदी, जांदियां भी देर नहीं लगदी। जे तैनू गुरु ने धन दिता है, कारोबार बढ़ा दिता है, सगों होर गुरु दा धन्नवाद कर। क्यों अपना जीवन बिगाड़ रहा है? एक बार श्री रामचंद्र जी दरबार विच बैठे सन, की तक रहे ने, एक कीड़ा दीवार ते चढ़दा है फिर थले डिग जाता है, इहदे वल देखी जाते ने, दीवार ते चढ़दा है फिर नीचे गिर जाता है। रामचंद्र जी इहदे वल तकी जाते ने ते फिर देख के ना हसण लग पए। कोल ऋषि मुनि बैठे सन, आखण लगे ऐ की गल है, क्यों हसदे हो? आ देखो बई, कीड़ा दीवार ते चढ़दा है डिग जांदा है, बई इहदे विच हसण वाली केड़ी गल है? इह ते हसण वाली कोई गल नहीं। श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा होंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा बड़ा राजा सी, इंद्र जिसदा नाम सी। इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ भलिया तेनू धन भी दिता, सोहणे महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहिदा है। नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे, दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है ओह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तैनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बांधीए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बणाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा? फरीदा, किथे तेंडे मापिया, भई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी? वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसे तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाहे सदा,
ਸ਼ਰਨ ਰਾਮ ਕੀ ਲਹਿ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 9ਵੇਂ ਮਹਿਲੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਜਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ। ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜਨਮ ਬੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चो नहर वगा दिती, इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसां केड़े केड़े नूं, ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगम्मी बाणी नूं मेरे मन दी कालख लै जावे।

जिन्होंने बाणी नु कुछ समझिया है, कीर्तन कर रहे सन ना इस तो पहला ते पढ़ रहे सन, धन धन गुरु जिन नाम अरातेया, आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छड़ाए, सवाल की तै बाणी की है अजे तक समझ नहीं आई, बड़ी बार कीर्तन सुने बड़ी बार कीर्तन कीता पर अजे तक बाणी दा नहीं पता लगा कि बाणी की है। हुण किहदे कोल पुछिए बाणी की है, ते सात संगत कई कई गुरसिख कई बीबियां जदों गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पाठ कर दिया ने, ते जदों पाठ करन तो बाद जितने सफे हो जान कई लोग कागजां दियां निशानियां रख देंदे ने, ते जिसने कदे प्रतख गुरु की देह समझिया होवे साडी अख च कोई एक तीला चला जाए ते सानू सारी रात नींद नहीं आउंदी। एक वारी आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहे। सवाल कीता ए बाणी की है, जिसनू बाणी दा पता है उसने कलम चुकी ते लिखना शुरू कीता। सानू एक सनेहा दिता बाणी पढ़न वाले हो, ए बाणी की है, साडी नजर ते सिर्फ इथों तक पहुंची है कि ए अखर ने ए सफे ने जिन्हां नू असी वरके कहने हां, जिन्हां नू असी पत्रे कहने हां, जिन्हां नू असी कई वार होर सुचजी बोली विच अंग कहने हां। ते सात संगत आ वेखो, तन है इस दी कलम ते तन है ए लिखण वाला, कहण लगा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते फिर की है। ते सात संगत अज तू ए प्रण कर लो, जो मैं कहण लगा अज तो बाद गुरु ग्रंथ साहिब नूं इसे तरह समझना। जिसने कलम चुकी है वो लिख रहा है, वो कहंदा ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ते जिदे सामने लिख रहा सी वो कहन लगा फिर की है। वो कहंदा जो मैं वेख्या वो मैं लिख रहा, जो मैं वेख्या ए अखर नहीं ए वरके नहीं, ए सीना ए गुरु नानक दा कमाल है।

पर हमेशा जीत तरमिया दी हुई है, अतरमिया दा हमेशा ही बुरा अंत होए है। ए शब्द भगत कबीर साहब जी दा उचारिया होया, जिद विच भगत जी बयान करदे ने कि प्रहलाद भगत ने

इंद्रदेव से ने हरनाक्ष जी का अरवाली क्या दोनों नारद मुनि के हवाले कर देता है। क्या दोनों नाल लेके नारद मुनि अपने आश्रम आ गए। आश्रम भी ओ जिते हर वक्त परमेश्वर का नाम जपया जाता है, उसका नाम लिया जाता है। क्या जो इत्थे आके अपना दुख भुल गई, सारा समा परमेश्वर का नाम जप के बतान लगी। ये जो नाम जपदी है परमेश्वर दिया कथा कहानियां सुनदी है, उसका असर एदे गर्भ विच है, पोस्ते हो रहे है। क्योंकि कहंदे ने जो मां खावे उदा असर बच्चे ते हुंदा है, ते जैसी मां दी बिरती होवे जहो जिहा सुने ओहो जिहा असर होण वाले बच्चे ते हुंदा है। हुण ए नाम जपदी नाम सुनदी है, उस नाम दा असर

बड़ा उग्र कठिन तप कीता। दूसरे पासे नारद मुनि दे आश्रम क्यादो ने एक बच्चे नु जन्म देता, जिस बच्चे दा नाम प्रहलाद रखिया गया, जिस नु आपा सारे प्रहलाद भगत करके याद करते हैं। उधर हरनाकश की तपस्या पूरी हुई, भगवान ने प्रत्यक्ष प्रगट होके

देवते ते चढ़ाई करन दी ते पहला इंद्र को लो बदला लवा ते बाकियां दे नाल फेर लड़ांगा। ते लड़ाई दी तैयारी कर रहे है।

विष्णु भगवान नु ए भगवान हर नाकिश बड़ा जुलम कर रहे है, मंदिर बंद करा देते, अपना नाम जपा रहे है, दुनिया बड़ी दुखी है, असी भी दुखी है। ता भगवान ने कहा है, तुसी घबराओ ना, जदू को जुलम कर दे एक वरी वो अत जरूर चुक दे, पर हर जुलम दा अंत है, कदी बुरा समा हमेशा रहिंदा नहीं। हर नाकश दा अंत होवेगा। सारिया ने कहा भगवान इस तरह अंत होवेगा। ता भगवान ने कहा सुनो।

पैदा होया है वो मेरा भगत है। प्रहलाद ने अपने पिता का नाम जपना नहीं, एक घर विच लड़ाई शुरू हो जानी ते हौली हौली इसे घर की लड़ाई ने हरनाक्ष का नाश करा देना है ते दुनिया नू हरनाक्ष दे मरण दे नाल ही

पढ़ाई तो पहला जेड़ा जरूरी सबक है वो तुसा सारे ने लिखना है ते बोलना है। सारे बच्चों नु कहा अपनिया पटियां ते लिखो ते बोलो जले हर नाकश फले हर नाकश। हर नाकश ही रब है, हर नाकश ही भगवान है। ता उस वक्त जो प्रहलाद ने कहा कबीर साहब ने लिखा।

देश पिता छोटी उम्र है पिता वाल देखे जिदे चेहरे ते बड़ा गुस्सा है ते के प्रहलाद मेरा नाम जाप

पानी विच डोब के मार दियो। सिपाहियां ने प्रहलाद नूं फड़िया, हाथ पैर बन के उची पहाड़ी ते लै गए। बड़ी डूंगी नदी जिन्हों देख के भी डर लगता सी, छोटे जे बच्चे प्रहलाद नूं चुक के

सर गए, सारे लोग खुशी नाल झूम उठे कि सचमुच परमेश्वर धर्मियां दी रखिया करदा है। हर नाकश नूं बड़ा गुस्सा चढ़े, होलकां सड़ गई, प्रहलाद बच गया।

जे तेन अपने रब ते भरोसा है। इस तत्ते थम जफी मार जड़ा अग दी तरह सड़दा पे है। ते नाले हरनाकश ने तलवार खिंच ली।

ना मेरे हाथ विच कोई हथियार है। जद सारे वर परमेश्वर ने गनाए ते नाले किया देख ले, ना मैं औरत हां ना आदमी। सारे वर पूरे, अद्धा शरीर आदमी दा है, अद्धा शरीर शेर दा है। जदू हरनाग उसने किया, हां भगवान जिन्ने वर मैं मंगे सन सारे पूरे ने। परमेश्वर बड़ा बेअंत है, गुरु हमेशा चेले कुल एक गुण वध रखदा है। की पता है चेला कदू हंकार विच आके ते मुकाबले ते बह जावे, ते जेड़ा चेला मुकाबले ते बैठे ओ चेला हो भी नहीं सकदा। ते ऐसियां दा नाश

भगत कबीर सब नाल भी होया। हिंदुस्तान दा बादशाह सिकंदर लोधी उसनु पता लगा कि कबीर मुसलमान है, पर मुसलमान हो के ए राम राम करता है। कुछ लोका ने कान भरे, सिकंदर लोधी ने भगत कबीर ने अपने दरबार च बुलाया। भगत कबीर साहब बनारस विच रहा करदे सन। सिकंदर लोधी दे सामने होए सिकंदर लोधी ने कहा, ऐ कबीर तू मुसलमान है, तू सुन्नत नहीं कराई, सुन्नत करा ते राम राम छड़। कबीर साहब ने कहा, ऐ बादशाह परमेश्वर एक है, ओदे नाम कई ने, किसे नाम नाल भी उन्हों याद कर लो।

अपने सिपाहियां नूं इस कबीर नूं पढ़ो, इहदे हथ पैर बन्नो, इहनूं गंगा विच डोब के मार दिओ। इस गल नूं

पर मैं बड़ा हैरान होया इना लोकां दी अकल ते। एक पास कहंदे ने गंगा मां है पापां दा नाश करदी, ते उसे गंगा मां विच ए मैनू

जिदे अगे हिंदुस्तान दे लोग झुकदे ने डर के ए बादशाह है। उस बादशाह नूं हाथ जोड़ के कबीर साहब दे चरणा दे मत्था टेकना पिया। उपदेश कीता है, ऐ भाई उस परमेश्वर ते भरोसा रखो जिहड़े अधर्मी ने एक वरी ते जुलम करदे ने, पर समय नाल अधर्मियां दा नास हो जांदा है ते धर्मियां दी हमेशा परमेश्वर जित करांदा है। आओ भाई आपां इस परमेश्वर दा नाम जपिए, ओदा सिमरन करिए ताकि आए हुए कष्ट दूर होन, सुखां दी प्राप्ति होवे। आओ सारे उस परमेश्वर दा नाम जपिए, नाम ना छड़िए, जे नाम छड़िया ते दुखी रवांगे, जे नाम जपांगे ते भगतां दी तरह सुखां दी प्राप्ति होवे।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

उगटैतान तरंग रंग अज्ञान गीत बंधानंग चक चक रहे देवदानंग छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश बेस्तंजम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन एविद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ। ताति गहो आतम बस करके।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

देवदानं छक छक व्योम विवानं आत्मोपदेशे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बे।

चक चक रहे देव दानव मुन छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

समुपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भे संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वै

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव मुन छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वै

देवदानंद छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्या।

आनंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

उगटै तान तरंगरंग अति ज्ञान गीत बंधानंग चक चक रहे देवदानंग छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वै

देवदानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

मूल आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंग आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापो सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

दिवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आनंद आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

मन आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्मोपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

चक चक रहे देव दानंद, चक चक व्योम विवानंद, आत्म उपदेश बे संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे, प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापसो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन ए विद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बैब

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कब भू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

मन आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताकि गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जापस अजपा जापे, सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

चक चक रहे देव दानव छक छक व्योम विवानंद आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे रे मन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आतम बस करके

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

आत्म उपदेश वे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आनंद आत्म उपदेश संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंह साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे, प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला।

आत्म उपदेश दे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन सी काया कालन कबहु व्यापे रे मन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

आत्म उपदेश भेद संयम को जाप सो अजपा जापे, सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे। प्रेमन एविद जो कमाओ, सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान वैभू चढ़ाओ। ताति गहो आत्म बस करके।

आत्म उपदेश दे संयम को जापसो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान।

आत्म उपदेश भे संयम को जापस अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहु व्यापे प्रेमन एविद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्यान बै

समुपदेश भे संयम को जाप सो अजपा जापे सदा रहे कंचन से काया कालन कबहू व्यापे प्रेमन ए विद जो कमाओ सिंगी साच अकपट कंठला ध्या।

मनुख अपने घर दे सामान इकट्ठे कर रहा है। जे कोई इस नू जपन दा चेता कराउंदा है तां कहिंदा है जी बिरध अवस्था विच जप लवांगा। हजूर कहिंदे हन उस वेले तेरे कोल कुछ नहीं हो सकना, इसलिए जे जपना है तां फिर हुण ही जपना। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बहे, जे भा बचन शुद्ध नहीं निकसै तबरे धर्म की आस करे। इसलिए